0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल।

शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Bizainca.
1: Bizainca.
2: नवरा नवरीचा
0: वेगळा.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
4: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
5: 2 to 3 ब्रांचेस
3: ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और

0: उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे।

0: टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में दो पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप FM रेनबो को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं और हमारे सारे श्रोता हमें ज्वाइन करते हैं पूरी दुनिया से। और इसी वजह से मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी को बने रहना है हमारे साथ। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि काफी खास बातें आज होने वाली हैं, वो क्या है जानने के लिए बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो। दोस्तों, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और आज हम काफी कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, हर नई सुबह नई उम्मीदें साथ लाती है और हमारा मुंबई आखिर ठहरा सपनों का शहर। कुछ नया सीखने की उम्मीद से बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, नौजवान अपने करियर में कुछ कर दिखाने वाली ख्वाहिश मन में लेकर चलते हैं, हमारे सैनिक भाई देश की रक्षा में अपनी जिंदगी का एक और दिन देश के नाम करते हैं, और हम जैसे अनगिनत लोग जीवन में तरक्की और पैसों की आशा लिए निरंतर लगे रहते हैं। वैसे तो हर दिन वैसा ही होता है लगभग जैसा कि पहले का हुआ होता है, पर कुछ

कुछ कारणों से खास बन जाते हैं। आज का दिन भी कुछ खास है क्योंकि कला, सिनेमा, क्रिकेट और संस्कृति की दुनिया से जुड़ी कई यादें और उपलब्धियां आज के दिन हमारे साथ हैं। वो क्या है जानने के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर। और साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा, हर रोज एक नया ख्वाब लेकर हम बाहर निकलते हैं किसी नई मंजिल को पाने के लिए, तो ये गाना उसी के नाम, हमारे सपनों के नाम, हमारे ख्वाबों के नाम, हमारे जिंदगी के नाम। बने रहे, सुनते रहे। मैं हूं वैशाली, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। मस्त मुंबई चल रहा है, मैं हूं वैशाली आप सभी के साथ। और वही भागते दौड़ते इस मुंबई के बहुत ज्यादा व्यस्त जीवन में आज पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं चर्चगेट स्टेशन से बाहर निकली तो बारिश ने मेरा स्वागत किया। हाँ, मैं जानती हूँ कि कई जगहों पर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बौछार है, लेकिन यानी मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ ना। पर अभी नहीं, कोशिश नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर काम पे आना था। तो आज सभी का भी बारिश ने इसी तरह स्वागत किया होगा, और अचानक से कई लोगों के पास छाते नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ सिवाय उन लोगों के जो भाई वैसे भी धूप से बचने के लिए छाता कैरी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे हीट वेव के संदेश सुने तो आप बिल्कुल छाता लेकर निकले ही।

होंगे घर से। तो मैं तो भाई बच गई, मेरे पास छाता था। और आज जैसे मैंने कहा क्या कुछ होने वाला है एफएम रेनबो पर, आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले दोस्तों जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं हम मशहूर फिल्म मेकर मणि रत्नम जी को। भारतीय सिनेमा में संवेदनशील कहानियों, खूबसूरत दृश्यों और गहरे मानवीय रिश्तों को जिस अंदाज में उन्होंने पर्दे पर उतारा है ना रुपेले, वो उन्हें अलग पहचान देता है। उनके फिल्मों का संगीत भी, पूरा स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले इतना जबरदस्त रहा हमेशा। देखिए रोजा, बॉम्बे, दिल से और गुरु जैसी फिल्मों ने न सिर्फ मनोरंजन किया हमारा, बल्कि समाज और रिश्तों पर सोचने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया है। और उनके जन्मदिन पर हम उन्हें अच्छी स्वास्थ्य और सुखद जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी फिल्म का गाना आपको सुनवाने वाले हैं। तो मैं बस सोच ही रही थी कि कौन से फिल्म के गाने से शुरुआत करें। तो भाई क्योंकि बात हुई है ख्वाबों की, सपनों की, भागदौड़ भरे रोजमर्रा की जिंदगी की, इस मुंबई की बारिश की, तो हुई ना बात इस दिल की जिसमें बहुत सारी अनगिनत छोटी बड़ी आशाएं हैं और हम रोजाना भाग रहे होते हैं इन आशाओं के पीछे, इन ख्वाबों के पीछे। तो भाई चलिए वही गाना जो सभी के दिल को बहुत भाता है और बस वही सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो मणि रत्नम साहब को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ही वॉज विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम दागिना सोन्याचा असो वा हिऱ्यांचा। दागिना म्हणजे पूना गाडगिळ अँड सन्स। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और मस्त मुंबई चल रहा है। मस्त मुंबई की मस्त बातें ही कुछ और है, हम सभी जानते हैं। और इतना प्यार है हमें अपने शहर से कि बस हम थकते नहीं हैं इसके गुण गाते। और साथ ही साथ है इतनी सारी चीज़ें मज़ेदार कमाल। अब देखिए बारिश का मौसम जो है उसने हल्की सी अभी शुरुआत की है और मुझे पता है सभी के बारिश के प्लान्स बनने लगते हैं। जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है तो सारे ही वीकेंड्स जो है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हम जाकर इंजॉय करने का प्लान बनाते हैं। अब देखिए कोई जाता है एक दिन के ट्रैक के लिए और कोई जाता है भाई दो तीन दिन के आराम के लिए, तो जो भी है। लेकिन बारिश की बौछारें, बरसात की बौछार जो है ये बहुत ज्यादा सुकून और खुशियां लाती है, बशर्ते फ्लडिंग ना हो, है ना। तो ऐसी और कई सारी बातों के लिए बने रहें। क्विक कमर्शियल ब्रेक के बाद लौटेंगे 107.1 FM रेनबो पर लेकर और कई सारी बातें।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के,
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का
6: PM सूर्य घर मुफ्त

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और वही आ गए क्विक कमर्शियल ब्रेक लेकर और आप सभी को जो है बारिश के लिए और ज्यादा हमें एनकरेज करना है। बहुत ज्यादा उत्साह जो है मुंबई घरों में दिखता ही है और प्लानिंग्स होती हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे दोस्त जो है मिलकर मेरे साथ कहीं बारिश में घूमने चलने का प्लान बनाए, तो इसलिए चलो सभी है ना हमें ये बहुत ही जबरदस्त कमाल का गाना मणिरत्नम जी के फिल्म से, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। हमारे और भी सेलिब्रिटीज हैं, पर्सनालिटीज हैं जिनका आज जन्मदिन है, वो कौन है वही बताऊंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक लुत्फ उठाइए इस गाने का 107.1 FM रेनबो पर।

अब ये रहा गाना फिल्म गुरु से, जो मणि रत्नम जी की फिल्म है, और पहले चला गया पुराना गाना। और ये जो आपने सुना था 107.1 FM रेनबो पर लम्हे फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना, दोनों भी मेघों को बुला रहे हैं, तो आप भी इंजॉय क्यों नहीं करते।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और 107.1 एफएम रेनबो आकाशवाणी मुंबई केंद्र से। मस्त मुंबई चल रहा है और बातें कई सारी हो रही हैं यहाँ पर और खास चीजें। भाई आज की ताज़ा खबर तो यही रही ना कि यहाँ पर जो है हल्की सी बारिश हुई और बस ये बारिश धीरे धीरे एकदम अच्छे से जो है गिरे और बादल जो है हम पर मेहरबान हो और कुछ गर्मी कम हो जाए, यही कामना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं मस्त मुंबई में। और जैसे मैंने आप सभी से कहा था, आज जो है और भी सेलिब्रिटीज पर्सनालिटीज का बर्थडे है, तो आज के दिन अपना जन्म दिवस मनाती है प्रतिभाशाली अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। अपनी सहज अदाकारी और आत्मविश्वास से उन्होंने दर्शकों का हम सभी का दिल जीत लिया और खास जगह बनाई है अपने लिए। इनकी क्यूटनेस की तो क्या ही कहे और दबंगाई, भाई इतनी स्वीट सी। बड़े पर्दे पर उनके निभाए गए किरदारों ने एक सादगी हमें दिखाई उनकी और अपनापन दिखाई देता है उनका। उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं और आने वाले समय के लिए सफलता की मंगल कामनाएं। हम सभी टीम एफएम रेनबो मुंबई की तरफ से, आप सभी श्रोताओं की तरफ से भी। तो चलिए इनके फिल्म के गाने सुनते हैं दो बैक टू बैक

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, मैं हूँ वैशाली। और वही बातें हो रही हैं कई सारी, आज का दिन खास क्यों है। अब देखिए, संस्कृति जगत से यानी कि हमारे जो आर्ट एंड कहते हैं ना, जो बाकी चीज़ें फिल्मी दुनिया के जो सितारे हैं, उनमें से कुछ का आज जन्मदिन है। मणिरत्नम साहब, सोनाक्षी सिन्हा। और अब देखिए, खेल जगत के दो बड़े हस्तियां, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी आज का दिन खास है, क्योंकि आज जन्मदिन है ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध जुड़वा भाइयों स्टीव वॉ और मार्क वॉ का। एक और स्टीव वॉ ने अपने जज्बे नेतृत्व, यानी एक तरफ स्टीव वॉ ने अपने जज्बे नेतृत्व और संघर्ष से क्रिकेट इतिहास में अमिट छाप छोड़ी, तो दूसरी ओर मार्क वॉ ने अपने बल्लेबाजी से एक अलग ही नज़ाकत और खूबसूरती दिखाया। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने हमें दिखाई, और बहुत सुंदर खेल का इनके प्रदर्शन रहा, और दोनों भाइयों ने क्रिकेट को अनगिनत यादगार पल दिए। उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, एक और गाना सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म से, बहुत ही खूबसूरत वाला, और उसके बाद हम थोड़ा सा एक मोड़ लेने वाले हैं। ये मोड़ कैसा होगा और ज़्यादा खास क्यों होगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। और दोस्तों, अब बात उस महान शख्सियत की जिनकी याद भारतीय सिनेमा के इतिहास से कभी नहीं मिट सकती। आज पुण्यतिथि है राज कपूर जी की। हम शोमैन राज कपूर जी को ये शो का ये हिस्सा समर्पित कर रहे हैं। राज कपूर साहब सिर्फ एक अभिनेता या निर्देशक नहीं थे दोस्तों, वे भारतीय आम आदमी के सपनों, संघर्षों और भावनाओं के सबसे बड़े कहानीकारों में से एक थे। उनकी फिल्मों में प्रेम था, मासूमियत थी, सामाजिक संदेश था और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। चलिए उस शोमैन यानी राज कपूर का ये गाना, उनका ये गाना सुनते हैं जो उनके जीवन का आप कह सकते हैं मंत्र था, एंथम था। द शोमैन राज कपूर लिव्स ऑन हमारे यादों में, हमारे सिनेमा में,

हमें इंस्पायर करते हुए, हमें प्रेरणा देते हुए। और ये गाना जब भी हम मायूस होते हैं जीवन में, या जब भी दुख दर्द लगता है, तो बस ये गाना जीवन का, जिंदगी का फलसफा देता है। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. और अभी अभी कुछ वक्त पहले मैंने आप सभी को सुनवाए तीन गाने बैक टू बैक राज कपूर साहब के फिल्मों के. आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस घंटे यानी कि कुछ समय के लिए कुछ गाने हम उनको समर्पित कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें हम सभी की तरफ से दिल से नमन है. राज कपूर साहब ने आवाराशी, 420, संगम, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्मों में भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी. उनके किरदार हंसते भी थे, रोते भी थे, गिरते भी थे और फिर उठकर आगे बढ़ना भी सीखते थे और हमें सिखाते थे. जो गाने हमने सुने ना दोस्तों, वो हर तरह से दिखाते हैं कि राज कपूर जी का दिल जो है ये कितना नर्म था, ये कितने ज़्यादा संवेदनशील थे और भावनाओं को इस कदर शायद ही कोई रुपैले पर्दे पर दिखा पाया है. इमोशंस का सैलाब, और बिल्कुल दोस्ती की बात हो या प्यार की, मोहब्बत की, जिंदगी की, ठोकरे खाने की, नाकामयाबी की या कामयाबी के ऊंचाइयों की, हर इमोशन को बखूबी दिखाया राज कपूर साहब ने अपने फिल्मों के जरिए, संगीत के जरिए. उनकी फिल्मों का

गीत आज भी पीढ़ियों को जोड़ता है। शंकर जयकिशन की धुनें, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीत और मुकेश साहब की आवाज में राज कपूर का चेहरा, ये मेल भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत विरासतों में से एक है। आज हम उनके जीवन, उनकी फिल्मों और उनके अमर गीतों को याद कर रहे हैं। अब चलिए मुड़ते हैं उन गानों की तरफ जिनमें भी जीवन का फलसफा था एक अलग ही तरह का। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मस्त मुंबई बस खत्म ही होने को है। एक आखिरी गाना आप सभी के लिए प्ले होगा और दोस्तों आप सभी से कुछ साझा करना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा देश जो है आकाशवाणी के 90 साल का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी @90 के चलते उत्सव यहाँ हर तरफ मनाया जा रहा है और 9 दशकों के आकाशवाणी के इस सफर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 दशकों से आकाशवाणी ने देश की आवाज बनकर करोड़ों दिलों को जोड़ा है। संगीत, समाचार, साहित्य, संस्कृति और जनसेवा की ये यात्रा आज भी उतनी ही जीवंत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के इस गौरवपूर्ण सफर को देश भर में विविध कार्यक्रमों, संगीत समारोहों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से मनाया जा रहा है। तो आकाशवाणी @90 के उपलक्ष में 10:02 के बाद आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खां की विशेष मुलाकात। उससे पहले एक आखिरी गाना जाते जाते आप सभी के लिए राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी से और उसके बाद हिंदी में मुख्य समाचार 10:00 बने रहे, सुनते रहे। मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ बनी रहूंगी 11:00 तक। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: 10:18 हो चुके हैं। न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। अब समय हो चुका है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन जाओ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। श्री आओ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर भी शामिल हैं। मुख्य समाचारों में आगे, ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। मुख्य समाचारों के अंत में, अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में सप्ताहांत के दौरान आकाश में अत्यंत तीव्र गति से गुजरते उल्कापिंड के कारण तेज ध्वनि तरंगे सुनाई दी। इससे घरों में कंपन हुआ और लोगों में घबराहट फैल गई। नासा ने बताया कि लगभग 5 फुट चौड़ा ये उल्कापिंड लगभग एक हाथी के बराबर वजन का था। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। आप इस प्रसारण को 1044

किलोहर्ट्ज के मीडियम वेव यानी डिजिटल रिसीवर DRM पर भी सुन सकते हैं। नमस्ते भारत शुरू हो चुका है और आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष्य में होगी सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खां की विशेष मुलाकात। निर्माण सहयोग सुहिता मराठे, प्रस्तुत करता है नेहा खरे। बने रहे इस विशेष कार्यक्रम के लिए जो आकाशवाणी एट 90 के अंतर्गत आप सभी के लिए प्रस्तुत है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आकाशवाणी के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका और विविध भारती में हमारी पूर्व सहयोगी विदुषी छाया गांगुली, जो बरसों बरस संगीत सरिता जैसा नामी कार्यक्रम करती रही हैं। और बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियो में, आपको पाकर हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं।
1: नमस्कार यूनुस जी, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आकाशवाणी के स्टूडियो आना मेरे लिए घर आने जैसा है। यहाँ आकर हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो मेरी कर्मभूमि रही है ना। श्रोताओं से जुड़ने का ये अवसर देने के लिए मैं खास तौर से शैलेश मालोडे जी, नेहा खरे जी और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।
0: छाया जी, सौभाग्य मेरा है कि मैं यहाँ आपसे बात करने का सुअवसर प्राप्त कर रहा हूँ। आकाशवाणी ज्वाइन करने से पहले आपके जीवन में रेडियो का, या यूं कहें कि आकाशवाणी का क्या स्थान रहा है?
1: जी वैसे यूनुस जी, बचपन से ही घर के जो भी बड़े थे वे सब कहते थे कि आकाशवाणी पर समाचार सुना करो, रेडियो पर समाचार पढ़ने वालों और प्रसारकों को नियमित रूप से सुनोगी तो तुम्हारा डिक्शन, तुम्हारी भाषा, उच्चारण बहुत अच्छा हो जाएगा।
0: वाह।
1: इसके अलावा हम लोग आकाशवाणी पर बड़े बड़े कलाकारों का शास्त्रीय संगीत भी सुना करते थे, और दुर्गा पूजा के समय पर तो महालया हमारा सारा परिवार इकट्ठे बैठकर हम लोग आकाशवाणी पर ही हमेशा सुनता था। मुझे याद है मैंने आकाशवाणी पर ही मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर साहिबा को पहली बार सुना था। सुनते ही उनकी गायकी की मुतासिर हो गई थी, फिर उनको रूबरू सुनने का भी मौका मिला। उनको सुनकर ही मेरा रुझान पूरब अंग की गायकी की तरफ हो गया और मैंने विदुषी हीरा देवी मिश्रा से सीखना शुरू कर दिया। श्रोताओं को बेगम अख्तर साहिबा की गायी एक उपशास्त्रीय रचना सुनाना चाहूंगी। उनकी चैनदारी गायकी, आवाज में सोज और खनकती ताजगी को जरा गौर से सुने।
0: क्या बात है, क्या शुरुआत है। बेगम अख्तर की ये आवाज और बेहजाद लखनवी की ये गजल है।

0: छाया जी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आकाशवाणी एक जरिया था जिसने आपको शास्त्रीय संगीत की ओर मोड़ा?
1: देखिए यूनुस जी, शास्त्रीय संगीत के प्रति मेरा रुझान तो छुटपन से ही था
0: जी।
1: कॉलेज के दिनों में सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित निखिल बैनर्जी के साथ तानपुरे पर संगत करती थी। पंडित निखिल बैनर्जी और पंडित पन्नालाल घोष के साथ श्री गिरिजा प्रसाद मुखर्जी के घरेलू संबंध थे
0: जी।
1: गिरिजा दा के साथ मैं श्रीमती पारुल घोष के घर जाया करती थी। श्रीमती पारुल घोष फिल्म जगत की प्रारंभिक गायिकाओं में से एक थीं।
0: उन्होंने वो धीरे धीरे आरे बादल गाया था।
1: इवन पपिया।
0: क्या बात।
1: वे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष की धर्म पत्नी थी और प्रख्यात संगीतकार अनिल विश्वास जी की बहन थी
0: जी।
1: पारुल काकी के घर पर जब सब मिलकर बैठते थे तब संगीत के अलौकिक स्वरूप और महत्व पर खूब चर्चा होती थी। ऐसे वातावरण में उठते बैठते मेरा मन आहिस्ता आहिस्ता संगीत से जुड़ता चला गया।
0: क्या बात है।
1: आकाशवाणी की अहम भूमिका ये रही है कि काम के जरिए आकाशवाणी ने मुझे संगीत से जोड़े रखा
0: जी।
1: मेरी जानकारी का दायरा बड़ा किया, अनुभवों की विराट संपदा दी। आकाशवाणी को मैं सोने की खान मानती हूँ। भारत के श्रेष्ठतम कलाकारों की रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में उपलब्ध हैं। इनमें से कई गुणी जनों के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। काम करती गई और गुणी जनों के आशीर्वाद से सीखती गई।
0: वाह।
1: इसी बात पर यूनुस जी, क्यों ना हम श्रोताओं को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की गाई फिल्म मोगले आजम की सोहिनी ठुमरी सुनाए, जो शास्त्रीय रचना होते हुए भी फिल्म संगीत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई।
0: बिल्कुल।
1: और खान साहब हमेशा कहते थे कि स्वर के साथ तो लाड़ प्यार का रिश्ता होना चाहिए, जैसे कोई बच्चे के साथ आप लाड़ प्यार से खेलते हैं ना।
0: क्या बात है। वही रिश्ता होना चाहिए स्वर के साथ जी। प्रेम जोगन बन के इसको सुनते हैं।

Gana.

Oh.

0: शाहिद जी, ये जो प्रेम जोगन बन के है, ये उस बड़े गुलाम अली खान साहब ने पहली बार सिनेमा में गाया, इससे जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: हाँ यूनुस जी, इस ठुमरी के रिकॉर्डिंग की कहानी भी उतनी ही अनोखी है
0: जी।
1: फिल्म के निर्देशक के आसिफ साहब ने बड़े गुलाम अली खान साहब को गाने के लिए आमंत्रित किया था। खान साहब फिल्म के लिए गाना नहीं चाहते थे
0: जी।
1: उन्होंने टालने के लिए उस जमाने में 25,000 रुपए की बड़ी रकम लेने की बात कह दी। बड़े गुलाम अली खान साहब की हाँ के सामने बड़ी रकम क्या चीज थी। के आसिफ तुरंत तैयार हो गए, जैसे उन्हें चांद मिल गया हो। रिकॉर्डिंग के समय खास साहब के

0: कहने पर स्टूडियो में बाकायदा महफिल सजाई गई, गद्दे बिछाए गए, मसनद लगाकर माहौल बनाया गया और फिल्म का सीन प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया गया।
1: गजब।
0: दृश्य सामने चलता रहा और सीन के मुताबिक खान साहब उसे महसूस करते हुए एक्सटेम्पोर गाते गए। श्रृंगार रस से सराबोर राग सोहनी पर आधारित यह ठुमरी एक मास्टरपीस धरोहर के रूप में अमर हो गई।
1: क्या बात है, गजब। छाया जी, खान साहब के भाई बरकत अली खान साहब भी तो एक कमाल के गायक थे।
0: जी, खान साहब के जो छोटे भाई थे ना, उस्ताद बरकत अली खान साहब पटियाला घराने के बेहतरीन ठुमरी गायक थे।
1: जी,
0: वैसे देखिए ठुमरी हर कोई नहीं गा सकता, उसके लिए खास मिजाज चाहिए। बरकत अली खान साहब जितनी बारीकी और नजाकत से ठुमरी गाते थे वो बेमिसाल है।
1: क्या बात है, मेरे कानों में उनकी आवाज गूंजने लगी। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस आकाशवाणी से आप इतनी प्रेरित हैं एक दिन उसका हिस्सा बन जाएंगी आप?
0: देखिए यूनुस जी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आकाशवाणी से मेरा जीवन भर का संबंध जुड़ेगा, पर हाँ, मैं इतना जरूर चाहती थी कि मैं जहाँ भी काम करूँ वहाँ संगीत से मेरा संपर्क बना रहे, और देखिए ईश्वर की कृपा से मुझे आकाशवाणी में काम करने का मौका मिल ही गया। जैसे आकाशवाणी और मेरी राम मिलाई जोड़ी हो।
1: बिल्कुल। क्या पहली पोस्टिंग आपकी संगीत विभाग में हुई थी या फिर कहीं और कुछ काम करना पड़ा था?
0: नाना यूनुस जी, मेरी पहली पोस्टिंग विज्ञापन विभाग में हुई थी।
1: अरे, ये तो हिसाब किताब वाला काम था।
0: जी, पर यहाँ भी संगीत की दुनिया से नाता टूटा नहीं।
1: जी जी,
0: एक तो यहाँ काम करते हुए ही जयदेव जी से संपर्क हुआ, गमन की गजल रिकॉर्ड की, अन्य कार्यक्रम भी किए। दूसरा, गुणी जनों से मिलना और उनकी बातचीत सुनकर सीखना भी होता रहा।
1: क्या बात है।
0: मसलन इसी दफ्तर में विभाग अध्यक्ष थे श्री हम्पी होली जी, जो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के भाई थे।
1: ओहो।
0: एक दिन पंडित जी जब उनसे मिलने आए तब होली जी ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। पंडित जी से बहुत सी सुरीली बातें सुनने को मिली। एक बात मुझे हमेशा याद रही, आपको बताती हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: उन्होंने कहा था कि जो सुर में नहीं है वो सच्चा नहीं है, बेसुरा गाना सुनना भी मत, क्योंकि स्वर में ही तो ईश्वर है ना।
1: क्या अद्भुत बात है, वाह। जब आपने पंडित जी का जिक्र किया तो मेरे जहन में पंडित जी और मनादा का गाना गूंजने लगा।
0: जी, बसंत बहार।
1: उसका भी मजेदार किस्सा है कि मनादा उसको गाना नहीं चाहते थे और वो पूना भाग गए थे और किसी तरह से फिर वो
0: नहीं, उनकी वाइफ जो थी ना
1: सुलोचना जी,
0: सुलोचना भाभी जी, उनको कहा नहीं नहीं ये आपका काम है और आपको गाना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ ही केम फॉर द रिकॉर्ड।
1: और क्या अद्भुत गीत है, केतकी गुलाब जो ही चंपक बन फूले। बसंत बहार फिल्म का गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन है।

0: बरसात की।
1: इतना सुंदर गीत, और यूं लगा जैसे बसंत ही आ गया है स्टूडियो में। जयदेव जी से आप कब मिली थी और उनका आपके जीवन में क्या स्थान रहा है?
2: कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1975 में मेरी सहेली सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम NCPA में सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित रामनारायण जी की मास्टर क्लास में मुझे ले गई थी। उन्हीं दिनों पंडित जी के माध्यम से मेरी मुलाकात जयदेव जी से हुई थी।
1: वाह।
2: 1978 में दूरदर्शन के जन्माष्टमी कार्यक्रम आरोही में भजन गाने के लिए जयदेव जी ने मुझे बुलाया था। संचालन पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने किया था। आरोही के बाद ही जयदेव जी ने मुझे गमन में गाने का अवसर दिया। उस समय में बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह थी, लेकिन जयदेव जी ने कुशल कुम्हार की तरह मेरी आवाज को अपने संगीत में ढाल लिया, मेरी आवाज के अनुकूल धुन बनाई।
1: एक मजेदार बात मैं कहना चाहूंगा छाया जी, कि वो जो आरोही कार्यक्रम है
2: जी,

0: कहीं से तो उसकी रीलें बन गई हैं और वो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर शेयर होती हैं।
1: अच्छा और जयदू जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी श्रोताओं से।
0: जी,
1: जयदू जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे
0: जी,
1: और बतौर संगीतकार विलक्षण रचनाकार थे। छोटी छोटी मुर्कियां, हरकतें, मींड और कुछ विशेष स्वरों का दोहराव उनके द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं में अमृत घोल देता था। जयदू जी से मैंने बहुत कुछ सीखा
0: जी,
1: छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से कैसे फर्क पड़ता है। जैसे कुछ अक्षरों ह भ ध थ इसका उच्चारण करते समय अगर मुंह को जरा सा ऑफ माइक यानी माइक से जरा सा हटा दिया जाए तो कभी ब्लास्ट नहीं
0: क्या
1: आएगा।
0: क्या बात है जी।
1: और जयदू जी के खास बात ये थी कि वो कलाकार की व्यक्तिगत मौलिकता को बहुत महत्व देते थे
0: जी।
1: व्यक्तिगत शैली को बरकरार रखते हुए गाने वालों को वो बहुत प्रोत्साहित करते थे।
0: देखिए, जयदेव जी का इतना जिक्र हुआ और आपने जो उनके साथ गाया रात भर आपकी याद आती रही, फिल्म गमन की ये रचना जिसे मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन ने लिखा था। और यहाँ ये जिक्र करना चाहूंगा कि ये वो गाना है जिसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।

0: चाहे जी बहुत ही शानदार रचना रात भर आपकी याद आती रही हमने सुनी। आपने अन्य कई गुरुओं से सीखा है, हम चाहते हैं कि उनके बारे में भी आप बताएं हमें।
1: जरूर, मेरे सबसे पहले गुरु थे श्री मानस मुखर्जी,
0: शान के पिताजी।
1: जी, शान के पिता। वो बहुत अच्छे कंपोजर और गायक थे
0: जी।
1: फिर मलय चक्रवर्ती जी से और श्री गौतम मुखर्जी से भी कुछ दिन सीखा। विदुषी हीरा देवी मिश्रा जी से मैंने लगभग 4 साल तक पूरब अंग की गायकी सीखी।
0: अरे गजब, तो ये तो कमाल है। हीरा देवी मिश्रा जी ने तो गमन में भी गाया था।
1: जी हाँ, उन्होंने भैरवी ठुमरी गाई थी ना, रस के भरे तोरे नैन।
0: हाँ।
1: और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और दुर्भाग्यवश वो बहुत जल्दी चली गई
0: जी। पूरब अंग के रस में भीगी उनकी आवाज सुने बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं छाया जी। रस के भरे तुरे नयन सुनते हैं और नमन करते हैं हीरा देवी मिश्रा जी को
1: जी।

0: छह जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के स्टूडियोज में आप आई और इतनी सारी बातें आपने हमें बताई।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आके और अपना अनुभव साझा करके।
0: तो अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी और तब कुछ और बातें मैं आपसे पूछूंगा।
1: जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, अब फिर मिलेंगे।

आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खान की विशेष मुलाकात। निर्माण सहयोग सुहिता मराठे और प्रस्तुतकर्ता थी नेहा खरे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं। नमस्ते भारत जारी है और कुछ और गाने आपको सुनवाएंगे नमस्ते भारत में। अभी अभी आपने जो ये मुलाकात विशेष मुलाकात सुनी यहाँ पर 107.1 FM रेनबो पर, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत और लाइट क्लासिकल गानों का लुत्फ आपने बिल्कुल उठाया होगा, हमें उम्मीद है और यकीन भी है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप जो है अपना फीडबैक लिखकर भेज सकते हैं fmrainbowhindi25@gmail.com पर, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4515-4132 पर। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 8657661071। दोस्तों आज तेलंगाना स्थापना दिवस भी है। तेलंगाना के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी समृद्ध संस्कृति लोक

परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रगतिशील सोच के लिए पहचाने जाने वाले तेलंगाना ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर राज्य के सभी नागरिकों के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। और आपको सुनवाते हैं कुछ और बहुत ही प्यारे गीत। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। और ढेर सारी बातें हमने आज की, बहुत सारे गाने आपको सुनवाए और भाई ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी को सुनवा रहे हैं एक से बढ़कर एक गीत, तो बने रहे, सुनते रहे। आप सबके मैसेजेस भी बहुत जल्द मैं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज जो है टाइम बहुत ही टाइट रहा। और हम जो मुंबई का रहे, हमें आदत होती है इस भाग दौड़ भरे जिंदगी की, सारी चीज़ें जब पैक्ड हो तब भी हम चीज़ों को बखूबी कर पाते हैं। तो भाई आज ऐसा ही कुछ सिलसिला लग रहा 107.1 FM रेनबो पर। बने रहे, अगला गाना आप सभी के लिए पेश खिदमत है।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: न्यूज ऑन एआर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और मैं हूँ वैशाली। एक आखिरी गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाली हूँ और साथ ही साथ आप सभी से लेने वाली हूँ इजाजत। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है आने वाले दिनों में, यानी कि 5 जून को, शुक्रवार को हम मिलेंगे रेडियो पर 107.1 एफएम रेनबो पर। और भाई कुछ खास चीज़ें, कुछ खास बातें होंगी 5 तारीख को, तो इंतज़ार रहेगा मुझे भी आप सभी से रेडियो पर मुलाकात करने का। तो भाई अब मैं छोड़े जा रही हूँ आपको आरजे नमिता के साथ, वो ले आई है अपना खूबसूरत सा आपको दीवाना मस्ताना बनाने वाला प्लेलिस्ट लेकर आ गई हैं स्टूडियो में। तो आपको छोड़े जा रही हूँ इस गीत के साथ, बने रहे, सुनते रहे, अपना ध्यान रखें। क्लाइमेट कुछ अजीब सा हो सकता है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बने रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मैं हूं आरजे नमिता। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पनामा के ध्वज वाले कंटेनर जहाज MSC सरिस्का 5 को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि ओमान के पास ईरानी जहाज पर हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई। जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और जहाज ने यात्रा जारी रखी। किसी पर्यावरणीय नुकसान को भी सूचना नहीं है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वीरेंद्र सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीन ताइपे से होगा। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। पेश है कार्यक्रम ब्रेक फ्री।

मौसम मस्ताना हो या ना हो, कई बार चिलचिलाती धूप और गर्मी इस कदर रहती है, ये गाने थोड़ा सा आपको ठंडक ज़रूर पहुंचाएंगे, इसका वादा है। वैसे कई बार आपने लोगों से नेगेटिव बातें, नेगेटिव ताने, आलोचनाएं, नकारात्मक शब्द ज़रूर सुने होंगे और वो सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप टूट भी गए होंगे। तो अब नेगेटिव वर्ड्स जिन्हें जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन पर करेंगे बात ब्रेक फ्री प्रोग्राम में। कई बार आपने ये डायलॉग सुना होगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। ऐसे ही शब्द कईयों की सफलता की कहानी का आधार बने हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लफ्ज़ आपको सुनने को मिले हैं? जल्दी से लिख भेजिए इस नंबर पर 8657661071 पर। मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और लाई हूँ अपने साथ वो गाने जो आपके जीने का अंदाज़ बदल दे, जो आपको मौसम की रफ्तार बताए।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, म्यूजिकली और एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, मैं हूँ अर्जुन अमिता। ब्रेक फ्री प्रोग्राम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं उन नेगेटिव वर्ड्स के बारे में जिनको लेकर हम अक्सर उदास हो जाते हैं। किसी के मुंह से जब ना सुन लेते हैं ना, तो हम उदास हो जाते हैं। और ये नई जो होता है, कोई भी बोलता है तो दूसरे वाले को बुरा ही लगता है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, या हम कहीं रोड पर हों और किसी अनजाने से भी ना सुनते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, पर ये ना शब्द हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार ये ना शब्द जो होता है वो ही हमारी ताकत भी बन जाता है ना दोस्तों। जब आपसे कोई कहे कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसके आगे क्यों लगा दीजिए, हमसे ये क्यों नहीं हो पाएगा, बस आंसर मिल जाएगा। और अगर क्यों आपको भी सटीक लगता है, तो इस क्यों को डिलीट कर दीजिए और क्यों नहीं में बदल दीजिए, हमसे ये क्यों नहीं हो पाएगा। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है उस नकारात्मक को हटाने का, है कि नहीं दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली है, उनसे भी कभी ना कभी कहा गया है कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जवाब शब्दों से नहीं दिया, अपने काम से दिया है। तो कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं देना होता है, अपने कर्म को इतना ऊंचा उठाना होता है कि अपने आप ही आपकी कही जाने वाली आवाज़ दूसरों तक पहुँच जाए आपके कर्मों के जरिए।

जी हाँ, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स जो आज हम बात कर रहे हैं ब्रेक फ्री में, वो आपको दिल से बुरे लगने लगते हैं और ऐसा लगता है हमें ही ऐसा टारगेट किया जा रहा है और हमें ही ऐसा बोला जा रहा है। इसमें से एक शब्द तो नहीं है जिस पर हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा दूसरा शब्द है तुम अलग हो, डिफरेंट हो। अब ये सुन

यार कई बार हम उदास हो जाते हैं। कोई कहता है कि आप बाकियों से अलग हैं, बाकी लोग तो सिमिलर काम करते हैं, आप तो अलग काम करते हैं। अलग ही तरीका है आपका हर बात को लेने का, हर बात पे रिएक्ट करने का, आपका एटीट्यूड ही अलग है। भाई ये लफ्ज़ जब आप सुनते हैं तो हाँ उदासी हो जाती है, और कई बार लगता है ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है और बाकी सबको पता है, जस्ट हम ही अवेयर नहीं है। सो इस डीप स्टडी में ना जाएं तो ही बेहतर है। सलाह तो यही है हमारी कि जो सबसे अलग दिखाई देता है वो ही सबसे आगे निकल जाता है और सबसे बेहतर भी हो सकता है अगर बेहतरी की तरफ चले या एक एटीट्यूड अपना बनाएं और ज़िंदगी के सही फ़लसफ़ों पर चले। अब सही गलत की परिभाषा भी तो अपनी अपनी होती है ना। सो इस परिभाषा में एक सामूहिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पॉजिटिव है, जो सही है, जो आपको अलग होते हुए भी सही लगता है और जिसके सभी तर्क आपके पास हैं, तो यकीन मानिए आप अलग ज़रूर होंगे मगर पॉजिटिवली अलग होंगे और अलग पहचान भी अपनी बना लेंगे, है कि नहीं?

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज नमिता आपके साथ है, ब्रेक फ्री प्रोग्राम चालू है। हम बात कर रहे हैं उन नेगेटिव वर्ड्स की जो आपके सफलता का बैरियर बने हुए हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, ये आप सबने सुना है और इस पर हम सभी जानते हैं कि हमें ये फिक्र नहीं करनी है, बेफिक्र रहना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पर जब वुमेंस की बात होती है, तो ये बात ज़रूर उनके दिमाग में, उनके जहन में डली होती है कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या ये स्टेप उठाएं भी कि नहीं। भले ही वो हमें कितना भी उचित दिख रहा है, पर उसके ड्रॉबैक्स हैं कि लोग उसे सही नहीं समझते। तो लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है। हर किसी को एग्री कर पाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि वो लोगों में अगर हमारे कोई बहुत अपने शामिल हैं जो हमें मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए कि तुम्हारा भविष्य इसमें सही नहीं है या तुम्हारे लिए आगे जाके कोई नुकसान हो सकता है, तो यकीनन उसे मानना पड़ेगा। तो आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि क्या कहेंगे लोग, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या कहता है आपका सेल्फ और क्या कहते हैं आपके अपने, जो आपके भविष्य के या आपके हितैषी आपके साथ रहते हैं। तो उन हितैषियों को और उन लोगों को जिन्हें आप जानते पहचानते नहीं, या फिर जो आपको पूर्णतः जानते नहीं है, जस्ट आपका नाम जानते हैं, आप उनके नेबर्स हैं, आप उनके रिलेटिव्स हैं, दूर से वो आपको देख रहे हैं, तो उनकी बातों पर नहीं, पर हाँ, अपनों की बातों पर हमें ज़रूर सोचना पड़ता है कि नहीं। और भी ऐसी बातें, कई लोगों के नाना करने पर भी काम हो ही जाता है कि नहीं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फैम रेनबो ब्रेक फ्री प्रोग्राम में. मैं हूँ आरजे नमिता और हमारी बात हो रही है कुछ ऐसे नेगेटिव शब्दों पर जो आपके लिए पॉजिटिव बन जाते हैं. अच्छा, कई बार जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपने अक्सर ही हमारे खुद के मुंह से भी निकल जाता है और कई

बार आपने लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ऊंची छलांग के बारे में सोचा है। भाई ये जो शब्द होते हैं ये एक्चुअली आपको आपके जो भी आपने सीमाएं निर्धारित की हैं अपने उड़ने के लिए, जो आपको दिखाई दे रहा है उस विजन को ब्लर कर देते हैं। ये डायलॉग्स अपनी लाइफ में बिल्कुल एक नेगेटिव अप्रोच की जगह उसे पॉजिटिव अप्रोच की तरह देखा जाए कि क्यों नहीं इतने बड़े सपने देखे जा सकते हैं। अच्छा, सपने भी बड़े नहीं देखेंगे तो आखिर काम कैसे करेंगे? सो एक तो चीज़ हमारे हाथ में है जो हम बड़ी देख सकते हैं, कर सकते हैं, और जब तक सपने बहुत बड़े नहीं होंगे ना, तब तक वहाँ पहुँचने की रफ्तार भी नहीं बढ़ेगी। यकीन मानिए, बड़े सपने देखने से ही बड़े सपने पूरे भी होते हैं। जो उन सपनों पर एक सीमित या एक नियमित रफ्तार से चलता जाता है वो मंजिल तक ज़रूर पहुँचता है। प्रणव शिंदे जी हमको लिखते हैं कि लकीरों को बदल कर अब दिखाना है, जो ना हो पाएगा मुझसे वही करके जाना है। कह दो दुनिया को जो कहती है, कहने दो, मुझे तो हौसलों से अपना नया आसमान बनाना है। भाई क्या बात है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने अपनी तरफ से अलग अलग बात कही है और कही है कि कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी है वो हमें हराने की कोशिश हर बार करेगी। लोग हमारे बैरियर ज़रूर बनेंगे, लेकिन हमें इन सब को दरकिनार करके अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल बढ़ाना भी होगा और कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना होगा। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM रेनबो 107.1।

जी हाँ, दिल तो बिल्कुल नहीं मानता कि ब्रेक फ्री को यहाँ पे विराम दे, लेकिन इसी गाने के साथ समाप्त होता है ब्रेक फ्री प्रोग्राम और आगे बढ़ते हैं समाचारों के उस पर। म्यूजिक कैफे कर रहा है आपका इंतजार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आरजी नमिता। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों के वारिसों को अब प्रौद्योगिकी विकास निगम में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसके अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में मृतक प्रदर्शनकारियों के वारिसों का तुरंत वेरिफिकेशन करें और सर्टिफिकेट बांटें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। और समाचारों के अंत में, घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक की शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक की से गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़क कर 23,229 पर था। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

एक बार फिर आपका स्वागत है एफएम रेनबो पर और आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। मैं हूँ आरजे नमिता और अभी अभी हमने सवारलू गर्ल को हैप्पी बर्थडे किया है भाई इस गाने के जरिए, बिकॉज आज के दिन सोनाक्षी सिन्हा जो एक्ट्रेस हैं हिंदी फिल्मों की और अब तो वेब सीरीज़ में भी दिखाई देने लगी हैं, तो इनका आज के दिन जन्मदिन है और फोर्ब्स की एक अच्छी सेलिब्रिटी ये कहलाती हैं। 100 की लिस्ट जो थी एक वक्त पर, यानी 2012 से 17 के बीच में, ये 100 लिस्ट में वो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में ज़रूर अपना नाम रखती थी। ऐसा ही इनका करियर भी है और कई सारी फिल्में इनकी हमने देखी हैं, चाहे वो लुटेरा हो, दबंग हो, रावड़ी राठौर हो, सिस्टम हो, कई सारी मूवीज़ में बेहतरीन अदाकारी के ज़रिए इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि हम ये कह सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी और पूनम जी की बेटी हैं ये, लेकिन इनकी एक अलग पहचान रही है सिनेमा के दुनिया में। फिलहाल हैप्पी वाला बर्थडे आपको सोनाक्षी जी। आगे बढ़ते हैं और 2 जून की बातें करेंगे इस गाने के उस पार।

बिल्कुल, चिंता करते रहते हैं जो लोग 2 जून की रोटी का, वो उसी की बात आज हम करने वाले हैं म्यूज़िक कैफ़े में। दोस्तों, आज 2 जून तारीख है और 2 जून की रोटी यानी कि 2 दिन की रोटी कमाने के लिए लोग आज रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं और कई लोग इस रोटी की कीमत पहचानते भी नहीं हैं। जिन्हें सीधे हाथ यानी कि बहुत मेहनत के नहीं करनी पड़ती है, वो इस बात को नहीं समझ पाते। भूख इंसान को मेहनत करना सिखाती है और 2 जून की रोटी उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम होती है कि नहीं? एक ऐसी रोटी जिसके लिए किसान खेत में पसीना बहाता है, मजदूर ईंट उठाते हैं और लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली तक पहुंचने वाली एक रोटी कितने हाथों से होकर आती है? किसान बीज बो रहा है, बारिश उसका साथ देती है, मजदूर अनाज को मंडी तक पहुंचाता है और तब जाकर हमारे घर की रसोई में रोटी बनती है। इसलिए हर निवाले में ना जाने कितने लोगों की मेहनत शामिल होती है। दुनिया की सबसे स्वादिष्ट रोटी कौन सी होती है? जल्दी से लिख भेजिए 8657661071 पर।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, म्यूजिक कैफे चालू है और हम 2 जून की रोटी की बात कर रहे हैं. 2 जून की रोटी कमाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये मेहनत की रोटी जो होती है दुनिया की सबसे प्यारी रोटी होती है. बहुत सारे हमारे लिसनर्स भी यही मानते हैं, चाहे वो पंकज जी हों, महेश जी हों, सभी हमें लिख के यही भेज रहे हैं कि अपनी मेहनत से जो हम कमाते हैं और उसके बाद जो रोटी पकाते हैं वो दोनों ही मिलकर बहुत स्वादिष्ट होती हैं और पकाने वाले का प्यार भी जिसमें शामिल हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है. किसी ने हमें लिख के भेजा है कि माँ के हाथ की रोटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है. वाकई माँ के हाथ की रोटी का स्वाद इसलिए भी अलग होता है क्योंकि हम बचपन से उसी स्वाद से सबसे पहले रूबरू होते हैं. उसमें प्यार होता है, ममता होती है, अपनापन होता है. माँ की रोटी में स्वाद नहीं, दुआएँ भी होती हैं जो भूख ही नहीं थकान भी मिटा देती है. अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी घरवाली अगर आप

लिए रोटी बनाती है तो उसमें ये सब नहीं होता। ये सारे इंग्रेडिएंट उसमें भी शामिल होते हैं और तभी तो दावते इश्क जो है वो लग जाती है घर पर, जब उसमें सब कुछ शामिल होता है।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर

जी हाँ, कभी दिलबर अपने आपके लिए जब रोटी तैयार करते हैं, चाहे कई बार मेल्स होते हैं जो घर में कुकिंग करते हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, और वैसे भी जब भी मास्टर शेफ्स की बात होती है बहुत से मेल फिगर ही हमारे सामने आते हैं, है कि नहीं? सो उनके हाथ का भी स्वाद अलग होता है जब बड़ी चिंता के साथ या आपकी केयर करते हुए मैन सबके घर में रोटी बना पाते हों तो। बहुत मुश्किल काम है, अक्सर आदमियों से यही कहा जाता है कि आप सब्जी बना लो, यही बहुत बड़ी बात है, रोटी बनाना आपके बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी जब भी ऐसा संघर्ष होता है और लोग रोटियां बेलते हैं, बनाते हैं, मुश्किलों से खिलाते हैं, तो उसका स्वाद भी बड़ा रोमांटिक और बहुत टेस्टी होता है कि नहीं? अगर आपने टेस्ट किया तो जल्दी से हमें लिख दीजिए ऐसी रोटी के बारे में 8657661071 पर। दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए रोटी सिर्फ भोजन नहीं होती, एक संघर्ष का नाम है। कई लोग सुबह घर से निकलते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि शाम को परिवार के लिए 2 जून की रोटी लेकर लौट सकें। पसीने की बूंदों का जब सम्मान होता है तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी का इंतज़ाम होता है, होता है ना? और इसी रोटी का अगर हम सम्मान नहीं करें और घर में खाने को फेंकें या फिर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी थाली में परोस कर उस थाली को वेस्ट कर दें तो कैसा महसूस होगा उस हर इंसान को जिसने आपकी थाली तक उस रोटी को पहुंचाने की एक प्रक्रिया की है, और उसमें एक ही नहीं बहुत सारे लोगों का हाथ है। तो यकीन मानिए, कहीं ना कहीं खटकता है ये बात जब हम कचरों में देखते हैं रोटियां बिखरी पड़ी हैं। बहुत बड़ी बात है, उतना ही पकाइए जितना घर में खाने वाले लोग हैं, एक अंदाज़ा लेके चलिए, और साथ ही खाने वालों को भी इस बात पे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि थाली में, ख़ास तौर पर जब आप किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो हम थालियां इस तरह से भर लेते हैं जैसे हमारे पेट में उतनी जगह हो या ना हो पर दोबारा हमें ना आना पड़े। इस टिकल्लस से बचने के लिए जो थालियां भरी जाती हैं यकीनन वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देती हैं। गलत इसलिए नहीं कि वो बुरा दिख रहा है, गलत इसलिए कि आपके पेट में उसकी जगह नहीं है और उसे डस्टबिन में जाना है। अच्छा, डस्टबिन की बात कही जाए तो कई माताएं हैं जो खुद के पेट को डस्टबिन ही बना लेती हैं, यानी बच्चों का बचा हुआ खाना फेंकने में ना जाए उसे अपने पेट में डाल लेती हैं। भाई, कई बार ये बात लोगों तक पहुंचाई भी गई है और आप खुद भी समझदार हैं कि ज़रूरत

ज़्यादा खाना खाने से भी बहुत सारी बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं। मोटापा तो है ही बीमारियों की जड़। सो बचना हमारा काम है। कैसे एक नियमित खाना बनाएं और उस खाने को उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचाएं, उनको पूरा फीड करें, उसके बाद ही अपनी थाली में अपनी ज़रूरत का खाना लें, है कि नहीं?

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं नमिता आपके साथ और बात हो रही है 2 जून की रोटी। जी हाँ, इसी को कमाने के लिए दिन भर काम करते हैं कुछ लोग, ताकि घर गृहस्थी चल सके, घर की रोटी चलती रहे, चूल्हा जलता रहे। और कभी कभी वक्त मिलता है कि उन सभी परिजनों के साथ एक साथ बैठकर भोजन कर सकें। तो अक्सर ही शाम की रोटी हम सब साथ में ही खाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, संयुक्त परिवार में आप रहते हैं, एक साथ रोटी बनाकर खाते हैं, और सुबह भले ही सबके टाइमिंग्स अलग हों, लेकिन रात पर भोजन में सब एक दूसरे से अपने दिनचर्या भी डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ होता है तो लिख भेजिए 8657661071 पर। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनना, जूते पहनना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, लग्जरी गाड़ियों का होना, टीवी, फ्रिज कॉमन सी बात हो गई है, लेकिन अनकॉमन रह गया है संयुक्त परिवार में रहना और एक दूसरे से अपनी दिनचर्या डिस्कस करना। अगर आपके घर में भी होता है तो वाकई ये एक बहुत खुशी की बात है। रोटी जब साथ बैठकर खाई जाती है तो सिर्फ पेट नहीं, मन भी भर जाता है।

और संयुक्त परिवारों की बात की जाए तो उसकी ही प्रथा कम हो चुकी है, तो घर के जो चार सदस्य होते हैं, मम्मी पापा बच्चे, उतने भी अगर एक साथ बैठ के खाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव आप उस फैमिली में देखेंगे, क्योंकि ये जो रोटी होती है उस वक्त आपका पेट और मन ही नहीं दिल भी भर देती है, और आखिर इसी के लिए तो आप मेहनत करते हैं कि ये खूबसूरत सफल आपकी भी ज़िंदगी में आए और आप भी मुस्कुराएं, है कि नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में इस गाने के साथ।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं हूँ आरजे नमिता। आप सुन रहे थे समाचार और अब वक्त है हिट एंड हॉट प्रोग्राम का, जिसमें होते हैं आपकी पसंद के गाने और मेरी वाली पजल। सो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके। सबसे पहली जो पसंद आपको सुनवा रही हूँ ये है संगम फिल्म का गाना, राज कपूर जी की याद में सुनना चाहते हैं फिरोज जी। तो आइए आप सभी की पसंद पर ये गाना हम सुनते हैं।

संगम फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज़ थी और पसंद करने वाले फिरोज़ जी थे। इसके अलावा अभी गुलाब गायकवाड़ जी की पसंद का गाना बजने वाला है। फिलहाल आपको बता दूं हमारे साथ जो लोग इस वक्त जुड़े हैं, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, शेर राउत, राजेंद्र शर्मा जी, किशोर जी, प्रदीप जी, अशोक जी, धनंजय जी, अदनान अंसारी जी, अवधेश जी, साथ ही आयुब शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, फिरोज़ जी तो हैं ही, शुभदा जी, गुलाब जी, प्रमोद जी हमारे साथ हैं, साथ ही पंकज जी और संजय जी, अशोक ठाकुर जी, दिग्दर्शन और कविता जी, प्रणव जी, नितिन स्वामी ऐरोली से, शुभलक्ष्मी जी, अभिजीत जी बाबा दादर से, और विजेंद्र जी हमारे साथ अकोला से, मेहर अरोरा, राजेंद्र, संदीप जी, महेश जी, चेतन कुमार जी, अजय शाकरे जी और उनके बहुत सारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हिट एंड हॉट, जिसमें आपसे पूछती हूँ मैं कुछ सवाल। तो आज का सवाल बिल्कुल लिख लीजिए, बिल्लू फिल्म आपने देखी है? जी हाँ, जिसे पहले बिल्लू बारवर के रूप में घोषित किया गया था, बाद में इसका नाम बदल के केवल बिल्लू कर दिया गया। तो इस फिल्म में एक गांव था जहां पर ये बिल्लू रहते थे, तो कहां रहते थे आपको ये गांव का नाम हमें बताना है। जल्दी से लिख भेजिए कहां, 8657661071 पर, किस गांव में बिल्लू जो बारबर थे वो कहां रहते थे, किस विलेज में रहते थे जहां पर शूटिंग भी हुई थी, शाहरुख खान जी आए भी थे। सो जल्दी जल्दी अगर आपने ये कहानी देखी है तो याद आ ही गया होगा, आपके जहन में आ गया होगा, फटाक से लिख के भेज दीजिए। बने रहिए यहीं FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट प्रोग्राम FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. मैं हूँ आरजे नमिता. और आपसे मैंने पूछा था एक सवाल. सवाल ये था कि बिल्लू फिल्म जो है उसमें बिल्लू बार बार कहाँ रहते थे और कौन बने थे. भाई आपको पता ही है, सारी फिल्म लोगों ने देखी हुई है, हिट मूवी है. और बहुत सारे जवाब जो आपके हमको मिले हैं ये बताते हैं कि आप कितने ध्यान से फिल्में देखते हैं. फिलहाल हितेंद्र दास जी असम से हमको सुन रहे हैं और ये कहें कि सही जवाब किन लोगों ने दिया है तो हम आपको बता दें. सबसे पहले सही जवाब जो हमें हम तक पहुंचा है, प्रणव शिंदे जी और मेहर अरोरा जी. इन दोनों का सिमिलरली हमारे पास आंसर आया सबसे पहले. लेकिन बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब हमें दिया है. प्रणव जी भी हैं और मेहर अरोरा जी भी हैं, गुलाब जी, महेश जी, चेतन कुमार जी, शुभ लक्ष्मी जी, शुभदा जी, पंकज जी, प्रदीप जी और हितेंद्र दास जी, अजय जी, राजेंद्र जी, विजेंद्र जी, संजय जी, इब्राहिम जी और मुकेश कश्यप जी. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और इस सही जवाब में जवाब ये था कि बुदबुदा गांव में वो रहा करता था बिल्लू बार बार. सो अब वैसा ही कुछ इंटरेस्टिंग जो है सवाल वो छोड़े जा रही हूँ इस गीत के साथ साथ. इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता के नाम मैं आपको लेना चाहूंगी. नितिन जी आयरोली से इस गाने की फरमाइश कर रहे हैं और हमारा अगला सवाल वो ये है कि गॉड तुसी ग्रेट हो, इस फिल्म में गॉड की भूमिका किसने निभाई है. गॉड तुसी ग्रेट हो, इस फिल्म में गॉड की भूमिका किसने निभाई है.

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पे. मैं हूँ RJ नमिता आपके साथ और हिट एंड हॉट का ये जो सेगमेंट है वो फिर से जारी करते हैं, फिर से शुरू करते हैं नए गानों के साथ. और ये गाना पसंद करने वाले हैं अशोक जी मुलुंड से. फिलहाल जो मैंने आपसे पूछा था

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर. आपकी पसंद के गाने बज रहे हैं. ये जो गाना अभी अभी आपने सुना पंकज जी की पसंद का था, चेतन जी की पसंद का गाना बिल्कुल लगा ही हुआ है, रेडी है. पर हमारा सवाल 10 मिनट के लिए आप तक पहुंच जाए तो क्या बात है कि नहीं. जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, बताइए हमें कि बरसात, जो ओल्ड बरसात मूवी थी, उसे अगर आपने देखा है तो राज कपूर जी के अपोजिट में कौन सी एक्ट्रेस थी. आपको जल्दी से लिख के भेज देना है. और हमारा नंबर है 8657661071. बने रहिए यहीं, आपकी पसंद के गाने आ रहे हैं.

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि पुरानी वाली बरसात फिल्म में राज कपूर जी के अगेंस्ट में कौन सी हीरोइन थी, और सही जवाब है नरगिस जी थी। और सही जवाब देने वाले हमारे बहुत सारे साथी हैं, संदीप जी, शुभ

लक्ष्मी जी, प्रणव जी, पंकज जी, मेहर अरोरा जी, महेश जी, मिलिंद जी हमें जवाब देते हैं, नितिन जी, चेतन जी, प्रदीप जी, सभी के जवाब सही हैं, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हमें सही जवाब लिखकर भेजा है, प्रदीप जी और शुभ लक्ष्मी जी ने लिखकर भेजा है, आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाइयाँ। फिलहाल अगला वाला गाना जो आ रहा है इस वक्त, वो शेर राउत, मिलेश आर्य और उनके साथियों की पसंद पर है, ठिगरे पाड़ा गांव से। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ, और मेरे जाने का वक्त हो गया है तो कुछ मोटिवेशनल आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, अपनी दोस्त नमिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।

0: compliant, aware, and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship schemes in New Delhi today, the president said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically, and educationally.
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: The president highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. President Murmu emphasized that India has no shortage of talent and stressed on the need to identify, nurture, and provide the right platform for it to flourish.
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes in registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180 day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administered the oath of office to five new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Palli and Senior Advocate V. Mohana took oaths as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. The appointments were made weeks after President Draupadi Murmu promulgated the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, increasing the sanctioned strength of judges in the Apex Court from 34 to 38, including the Chief Justice of India. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in Mumbai today as part of his four-day visit to India. He was welcomed at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma. President U Min Aung Hlaing is scheduled to attend business and industry interactions and visit various sites in Mumbai today. He will also attend a special program organized in his honor at Lok Bhavan this evening. Chief Minister Devendra Fadnavis is scheduled to be present on the occasion. India has dispatched the second tranche of medical assistance to the Africa Centres for Disease Control and Prevention to support public health preparedness and strengthen Ebola response efforts across Africa. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar expressed confidence that the 43-ton shipment will further enhance public health preparedness and bolster Ebola response capacities across the African Union member states. The Union Health Ministry has said no case of Ebola virus disease has been reported in the country so far. The ministry has advised that anyone who has travelled from or transited through an Ebola-affected country in the last 21 days and develops symptoms such as fever, headache, muscle pain, diarrhea or unexplained bleeding should isolate themselves and inform local health authorities. The ministry has also urged citizens to call the helpline number 1075 for information, guidance and assistance. It emphasized that early reporting is crucial for saving lives and preventing the spread of the disease. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammed Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shahzad Bhatti. The ATS received the information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. More from our correspondent.
2: As part of this conspiracy, the terrorist gang was instigating persons to conduct unlawful acts. This intelligence was developed through electronic and physical surveillance and investigative efforts. During the inquiry, Mohammed Sheikh, resident of Azamgarh district, came to light. He had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp using Pakistani and Dubai phone numbers and through their social media accounts. Handlers of Shahzad Bhatti's gang had assigned Mohammed Sheikh to threaten and assassinate a female leader of a political party from another state. Mohammed Sheikh had arranged a 9mm pistol and was preparing to execute the plan to murder Sushil Chandra Tiwari. Akashwani News, Lucknow.
0: The Enforcement Directorate ED is conducting massive search operations at 20 locations across Mumbai, Surat, Ankleshwar and Rajkot against a transnational organized narcotics trafficking syndicate operated by Salim Ismail Dola and his associates. According to the Enforcement Directorate, investigations have uncovered a highly organized transnational criminal network. The network was involved in procuring precursor chemicals and clandestinely manufacturing mephedrone, also known as MD. It allegedly transported and distributed narcotic drugs across states and trafficked narcotic substances internationally. The probe has also revealed the use of hawala channels to collect and layer proceeds of crime. The government extradited Salim Dola last month from Turkey. He is a close aide of Dawood and operated a transnational network of drugs. The Directorate of Revenue Intelligence has busted a gold smuggling syndicate at Mumbai International Airport and seized 2.6 kilograms of foreign origin gold valued at around 4 crore 20 lakh rupees. Based on specific intelligence, DRI officials yesterday apprehended two passengers while they were attempting to smuggle gold into India from Dubai. During examination, officials recovered two pouches containing gold dust in wax form. The agency said the investigation led to a Navi Mumbai-based jeweler who is suspected to have conspired with accomplices to smuggle the gold into the country. Congress leader Shanimol Usman has been elected as the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in Kerala. Shanimol Usman got 99 votes and opposition candidate Mohammad Mohsin got 34 votes. All the three BJP members abstained from voting. The President, Vice President and Prime Minister have extended greetings to the people of Telangana on its Statehood Day. President Draupadi Murmu said Telangana is blessed with a rich cultural heritage and hard-working people. She said the state has made significant strides in innovation and development over the years. Vice President C.P. Radhakrishnan said, blessed with rich cultural heritage and vibrant traditions, Telangana has contributed significantly to the nation's progress. Prime Minister Narendra Modi reaffirmed the central government's commitment to providing full cooperation to the development movement of Telangana in the direction of realizing the dream of a developed India. He prayed for good health, happiness and success for the people of Telangana. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today extended greetings to Italy on the occasion of its National Day. In a social media post, Dr. Jayashankar expressed confidence that the special strategic partnership between the two countries will continue to grow from strength to strength. In West Asia, attention remains focused on Lebanon after a fragile U.S.-brokered arrangement between Israel and Hezbollah raised hopes of easing tensions in the region, though fresh violations have cast doubt over its durability. Lebanese officials say Hezbollah has accepted a U.S. proposal under which the group would halt attacks on Israel, while Israel would suspend strikes on Beirut's southern suburbs, a Hezbollah stronghold. However, the understanding falls short of a comprehensive ceasefire and clashes have continued in parts of southern Lebanon. U.S. President Donald Trump has described the development as an agreement to stop all shooting following talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and contacts with Hezbollah through mediators. However, Israeli officials have taken a more cautious position, saying military operations could resume if Hezbollah attacks persist. Soon after the announcement, the Israeli military reported intercepting projectiles fired from Lebanese territory, highlighting the fragility of the arrangement. More from our Dubai correspondent.
3: The fragile Lebanon de-escalation is unfolding against a far more dangerous diplomatic backdrop. Iran has formally suspended all dialogue and exchange of messages through mediators with the United States, citing Israeli operations in Lebanon, which Tehran had flagged as a precondition of any ceasefire agreement. Iranian sources linked to the resistance front have placed on their agenda the complete closure of the Strait of Hormuz and the activation of additional fronts, including the Bab el-Mandeb Strait at the mouth of the Red Sea, with the stated aim of punishing Israel and its supporters. Fighting in Lebanon presents a major obstacle in the emerging deal between Washington and Tehran, as Iran is insisting that any agreement must include a ceasefire in Lebanon. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: A delegation of Nepal's ruling Rashtriya Swatantra Party, led by party president Rabi Lamichhane, met BJP President Nitin Naveen in New Delhi today. The delegation was also scheduled to meet other senior leaders of the party. The visit seeks to initiate party-to-party engagement between RSP and BJP and provide an opportunity for exchange of views on organizational practices, democratic processes, and people-centric political outreach. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day. While heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level, with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-hyuk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Suryakant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
4: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
4: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
4: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
4: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज़ोन EIR ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और शाम के ठीक 5:02 का समय है और हाँ ये समय कार्यक्रम लव यू जिंदगी का

आज है 2 जून। सिनेमा ही जिनके लिए जीवन था, सोते जागते सिनेमा ही जो सोचते थे वो राज कपूर। आम लोगों की जिंदगी को उन्होंने दर्शाया अपनी फिल्मों में। सीधे साधे लोगों की दुनिया, उनकी दुनिया की वो मासूमियत, सरलता, सादगी, वो सब ऐसे दिखाया कि सबको वो सिनेमा अपना सा लगा। और वो जो खुशी थी, उन्हें हमारे लिए सिनेमा बनाने में खुशी थी और हमें उनका सिनेमा देखने में खुशी थी। इसीलिए तो वो सादगी देखते हुए, वो मासूमियत देखते हुए सबको लगता है अरे ये तो हमारी कहानी है, ये हमारे साथ कभी हुआ है। जो वो देखते थे अपने आसपास, वो सब कैसे फिल्मों में दिखाना है, ये जो कला उनके पास थी वो कुछ और ही अंदाज था उनका बताने का। और इसीलिए बहुत ज़्यादा सभी ने उनको भी और उनके सिनेमा को भी पसंद किया।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
4: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
3: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
4: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
3: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
4: म्यूजिकली योर्स।

सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी। किसी की जिंदगी में खुशी के पल देना एक बहुत सुकून देने वाली बात होती है, और राज कपूर ने ऐसे कई खुशी के पल हम सबको दिए हैं ना। सिनेमा के लिए जैसे वो जन्मे थे ऐसा उनका काम था, और मेरी फिल्म के गीत कैसे हो, संगीत कैसा हो, इस बात पर भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। और उनके जो संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो उनके साथ वो डिस्कशन भी करते थे, अक्सर होता था कि हर किसी को पसंद आए ऐसे गीत बने, इस बात पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था। दरअसल फेल हुए थे ना राज कपूर, तो बहुत चिंता थी उनके पिता को, लेकिन मतलब आगे क्या करेगा, जैसे सबको होती है ना, तो उनको भी थी, लेकिन इन्होंने बता दिया था कि मैं सिनेमा करना चाहता हूँ, सिनेमा ही करना है मुझे। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कि लव यू जिंदगी कहने वाले जो पल होते हैं वो ऐसे, मतलब ये जैसे टर्निंग पॉइंट था ना, फेल होने के बाद अब क्या, हम सोच में पड़ जाते कि अरे अब क्या, और कोई पूछे भी तो बताना है अब क्या, अब क्या। होता है ना हमारे साथ भी ऐसा। लेकिन ये जो लोग बड़े बन जाते हैं ना, वो भी ऐसे कुछ सिचुएशंस से ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं, और बस हमारा क्या होता है ना कि हम वो नज़रअंदाज कर देते हैं, या वो हो जाता है हमसे कि नहीं नहीं वो राज कपूर थे, हम थोड़ी ना ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये तो ऐसा नहीं होता है, वक्त किसके लिए क्या लिख कर रखता है ये तो हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए लव यू जिंदगी कहने का मौका जब जब मिले तब तब कह देना चाहिए। सो अब गीत तो होंगे ही राज कपूर के, लेकिन बातें हमारी होंगी लव यू जिंदगी कहने वाले जो जो पल होते हैं उनकी।

0: विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-doj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह
2: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो.
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो.
2: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक.
2: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल.
3: म्यूजिकली योर्स.

भीम पलासी खलासी भीम पलासी, मैं हूँ एक खलासी, अरे मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी खलासी भीम पलासी खलासी भीम पलासी।

दीवाना और हुसन का मैं परवाना, मैं अपने से अनजाना और दुनिया से बेगाना। हर इश्क का मैं दीवाना और हुसन का मैं परवाना।

सुन रहे आप लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकली और शुभांगी आज आपके साथ और गाने तो हम राज कपूर जी के सुन रहे हैं, जो फिल्में उन्होंने बनाई उनके भी गाने हैं और जिन फिल्मों में जो बाहर का प्रोडक्शन था उन फिल्मों में उन्होंने काम किया वो भी गाने, जैसे ये अभी आपने सुना इसके बाद भी कुछ ऐसे गाने होंगे जरूर। तो लव यू जिंदगी और राज कपूर का सिनेमा ये बहुत ज्यादा हाथ में हाथ डालकर जाता है ऐसे मुझे लगता है। अभी आते आते ना मैंने सुना ट्रेन में कि कुछ सहेलियों का ग्रुप बैठा था तो आपस में ऐसे जैसे एग्जाम्स और फिर रिजल्ट्स और ये सब बातें होती हैं ना, तो किसी को अपना कोई फेलियर याद आया था, कोई ऐसा रिजल्ट याद आया था और तब उसके फ्रेंड भी जब उसके साथ ही फेल हुई थी तो उनकी बातें ये चल रही थी कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे साथ कोई है वरना मैं अकेली फेल मैं अकेली फेल हो गई, ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ होता। मतलब हम ना ऐसी चीज़ों में भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई हो, कोई है साथ में तो हमें लगता है हाँ चलो चलो हम अकेले नहीं है। लेकिन ये सुनकर ना थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगा कि अरे ये कैसी सोच होती है ना हमारी। ऑफ कोर्स वो उम्र भी होती है तो हम ऐसा कुछ सोचते हैं जरूर, लेकिन बाद में ऐसी कुछ बातें याद करके हमें हंसी भी आती है। तो मतलब उस समय ज़रूर टेंशन रहेगा कि रिजल्ट क्या है और फेल हुए तो क्या, लेकिन बाद में वही चीज़ आपको कुछ सालों बाद मुस्कुराहट देकर जाती है कि वो एक एक खुशी देने वाली याद बन जाती है। होता है ना ऐसा, आपके भी साथ हुआ होगा कभी आपका रिजल्ट अगर आपको कोई ऐसा याद आ रहा है तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ऐसा तो मुझे भी कभी लगा था। होता है ना ऐसा। इसीलिए तो ये प्रोग्राम है लव यू जिंदगी म्यूजिकल योर्स 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम

सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी, मैं हूँ शुभांगी, आज आपके साथ और राज कपूर के गाने सुन रहे हैं हम और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं। आप बता रहे हैं हमें पंकज मोहोड़, विजेंद्र घाटोल, संजय पाटिल, हसमुख जी, डॉक्टर अंजू, शुभदा, अशोक पाटिल, राजेश मोरे, फिरोज सिगनपुरिया, ऐसे हमारे जो श्रोता है FM रेनबो के जो प्रेमी है उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। मैं फ़िलहाल लव यू ज़िंदगी में अब कुछ ही समय बचा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें गाने ज़्यादा सुनने चाहिए, है ना। अरे गाने हैं भी ऐसे, राज कपूर जी के गाने हैं, तो आगे पहले हम गाना सुन लेते हैं उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है, और आप सबका प्यार जो है एफएम रेनबो के साथ, और एफएम रेनबो का मौसम हमेशा ही सुरीला रहता है। फिलहाल आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज़े बयां। बस सुनते रहिए हमारे साथ 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। शाम के ठीक 6:15 का समय है और कार्यक्रम अंदाज़े में।

सुमन कल्याण पुर की आवाज़ में हमने आगाज़ किया अंदाज़े में या किस महफिल का, और भी कुछ गाने सुमन जी के गाए हुए सुनाऊंगी, कुछ गीत कुछ गज़ल। वैसे गज़ल की हर पंक्ति को मिसरा कहते हैं और दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है और ऐसे शेरों से ही तो गज़ल बनती है। और गज़ल ये महसूस करने की चीज़ होती है, कुछ ऐसी बात होती है गज़ल में। हर गज़ल को हम गीत तो कह सकते हैं, लेकिन हर गीत को हम गज़ल नहीं कह सकते हैं, कुछ वो जो ग्रामर के रूल्स होते हैं तो इस वजह से। लेकिन गज़ल सुनते हुए पहले आ निकलती है फिर वहाँ निकलती है, ये तो बात ज़रूर है। इसके बाद मैंने चुनी है ये गज़ल लता जी की आवाज़ में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते।

क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

सुन रहे हैं आप अंदाज है भैया। शाम का वक्त है, ठीक 6:35 का। अभी कुछ समय पहले मैंने कहा कि हर पंक्ति को मिसरा कहते हैं, गजल की हर पंक्ति को मिसरा कहते हैं, फिर शेर बनता है दो मिसरे मिलकर। तो फिर गजल के पहले शेर को कहते हैं मतला। अब ये गजल जो है वो महसूस करने की चीज़ है, ऐसा मैंने कहा है, और ऐसा गज़ल प्रेमी जो है उनका ये कहना होता है। लेकिन कुछ गीत भी ऐसे होते हैं कि जो महसूस करने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं कि वो जो शायर की कलम का कमाल होता है वो सब कुछ होता है जो हमें महसूस करने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ गीत सुनते हुए भी और कुछ गज़लें सुनते हुए भी ऐसा होता है जहाँ हमारा ध्यान जाता है बोलों पर। शब्द प्रधान गायकी है वैसे भी गज़ल गायकी, और कुछ गीतों में भी ऐसा होता है कि शब्दों को सुनना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और ऐसे महसूस करने के लिए मजबूर करने वाले कुछ गीत और कुछ गज़लें जो हैं उनमें से ये जो अभी मैं सुनवाने जा रही हूँ समझी की आवाज़ में, ये सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये महसूस करने की बात है।

आप सुन रहे हैं अंदाज़ है भैया, ये महफिल सजी हुई है कुछ गीत और कुछ गज़लें लेकर आई हूँ आपके लिए। और हर शाम कुछ ना कुछ इसमें आप नया सुनते हैं, कुछ अलग सुनते हैं, लेकिन ये जो महफिल

सजती है ये जिस प्यार से आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो से ही आपसे आपका जो प्यार है ना उससे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अब इस पर हम बोले भी तो क्या, स्पीचलेस बन जाते हैं, हम बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। तो इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और इसके बाद एक हाँ सुमन जी की आवाज़ में मैंने चुन तो रखा।

क्या बात है, ये गजल सुनने के बाद तो ऐसा लगता है ना कि बस गजलों की दुनिया में ही रहे, उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता है। कुछ ऐसी बात है इस गजल में, सुन रहे हैं आप अंदाज़े बयां, और बस आखिर के कुछ मिनट हमारे हाथों में है और इसके बाद ये नहीं, पहले सुन लीजिए।

ये जो एक गज़ल थी, और अक्सर ये होता है ना फिल्मों में कि किसी पार्टी में कोई गाता है, या तो हीरोइन या तो हीरो, या तो कुछ ऐसा दिल की बात कहने के लिए कोई ना कोई गाता ज़रूर है। तो ऐसे ही एक गज़ल थी, और ऐसी जो पार्टी हुआ करती है उसमें ऐसी गज़लें अक्सर हुआ करती थी। तो ये हमारा ध्यान नहीं जाता है ना कि हम इसे फिल्मी गीत कहकर सुन लेते हैं, लेकिन जब ये लगता है कि अरे ये तो गजल है, वो तो है अंदाज़े बयां। अब से कुछ ही देर में ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद 7:10 पर कार्यक्रम हम तुम।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Newzone AIR मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और शाम के ठीक 7:10 का समय है और ये समय है कार्यक्रम हम तुम का, जिसमें मैं आज एक सवाल लेकर आई हूँ और आपको देना है उसका जवाब। व्हाट्सएप नंबर ज़रा पहले बता दूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। और आपको बताना ये है कि या तो आपके कारण किसी की जिंदगी में खुशी के दो चार पल आए, ऐसी कौन सी बात, या तो किसी के कारण आपके जिंदगी में खुशी के दो चार पल आए हैं और आप उस बात को कभी नहीं भूले हैं, ऐसी कौन सी बात है। क्या कभी ये कोशिश की है या कभी बिना सोचे ही, बिना कोई कोशिश किए ही आपसे ऐसी कोई बात हो गई जिससे कि दूसरी जिंदगी में खुशी आई है। दो चार पल ही हम दूसरे को दे दें अगर खुशी के, वो आनंद अगर हमारी कारण बने, किसी की ज़िंदगी में खुशी के पल लाने की वजह अगर हम हो, तो उस बात का जो दिल को सुकून मिलता है वो कुछ और ही होता है। तो ऐसी कोई बात आपके साथ अगर हुई है तो आपको हमें बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8657661071।

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में ये गाना आप सुन रहे थे। सुन रहे आप हम तुम 7:23 हो चुके हैं और मैंने आपसे पूछा है कि क्या कभी आप किसी की खुशी के कारण बने या कोई आपकी खुशी का कारण बना है तो वो बात क्या थी। पंकज मोहड़ अमरावती से बताते हैं कि वो जब पहली बार पुणे में गए थे तो उनके मामा के रिश्तेदार ने बहुत मदद की थी और तब जान पहचान भी नहीं थी वो जो भी रिश्तेदार थे उनके साथ, तो उन्होंने ही इनका रिजर्वेशन भी करवाया था और बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए भी ये गए थे और इन्होंने पैसे देना चाहे टिकट के लेकिन उन्होंने वो लिए भी नहीं और तब से बस ये दोस्त बन गए। बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे कोई अगर किसी को ऐसे मदद कर देता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के तो वो कुछ और ही बात होती है। अरविंद कुलकर्णी इचलकरंजी से, इचलकरंजी है महाराष्ट्र का, इचलकरंजी है सो इचलकरंजनी, इचलकरंजी है राइट अरविंद कुलकर्णी जी है ना राइट। तो आपने ये बताया है कि आपके दोस्त के पिता एक बार बहुत बीमार थे और उन्हें खून की ज़रूरत थी तो इन्होंने चार दोस्तों ने मिलकर उस दोस्त के पिताजी को खून दिया था और जिससे उस दोस्त के चेहरे पर जो खुशी आई थी वो इन्हें खुश कर गई। वाह वाह बढ़िया बढ़िया अरविंद जी बढ़िया, इतनी बड़ी बात है किसी के लिए अपना खून देना जिसे ज़रूरत है और ब्लड डोनेट करना बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद राकेश माथुर कहते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने अपना पुराना घर बेचा था और जो भी पुराना सामान था वो तो कबाड़ वाले को स्क्रैप में बेच रहे थे उनके पिताजी, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम इसके पैसे नहीं लेंगे, उसको यूं ही दे देंगे, जो भी सामान है उसको हम यूं ही दे देंगे कबाड़ वाले को, तो पैसे नहीं लेने। और इस बात से वो जो बंदा था कबाड़ वाले

कबाड़िया बड़ा खुश हो गया और उन्होंने दुआएं दी, ऐसा इनका कहना है। तो ऐसे कुछ कुछ बातें होती हैं हमारे लिए, हो सकता है कि कोई चीज़ वो छोटी सी ही हो, हम कर रहे हैं इसे कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा हमें लगता है, लेकिन किसी और के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और इसलिए वो बात उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपसे ऐसी बात अगर किसी के लिए हुई है, कोई ऐसी खुशी की बात, आपके कारण अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, खुशी अच्छा की है, तो बात क्या है, या किसी के कारण आपकी ज़िंदगी में खुशी आई है तो वो क्या है, हमें बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। इसके बाद एक और रवि साहब और सुमन जी का ट्वीट।

0: विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-doj.in या वेबसाईट वरून मिळवू शकता.
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो.
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक.
1: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल.
2: म्यूजिकली योर्स.

आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुमसे अनबन कर 37 मिनट का समय है और मैंने जो आपसे पूछा है कि आप किसी की खुशी का कारण बने हो या कोई आपकी खुशी का कारण बना है जिस वजह से दो चार पल ही सही लेकिन आपको आनंद मिला है, वो दो चार पल बड़े खुशी हुई है आपको और वो कभी ना भूलने वाली बात बन गई है, ऐसी क्या बात है। तो अजय साखरे इंदौर से कहते हैं कि देखिए मतलब आजकल ना किसी के घर मिलना जुलना, जाकर मिलना, यह बहुत कम हो गया है। समय समय नहीं होता है किसी के पास और ऐसे में अगर कोई खास हमसे मिलने के लिए चला आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इंदौर से अजय साखरे कहते हैं और इंदौर की आओ भगत तो बहुत विशेष होती है और बहुत ज़्यादा आओ भगत करते हैं, बहुत प्यार से, है ना, इंदौर की यह खासियत है ना अजय जी। तो अजय जी से मिलने उनका जो बचपन का दोस्त था वो 30 साल बाद सब परिवार मिलने आ गए तो इन्हें बहुत खुशी हुई। ओहो, 30 साल आपकी ये दूरी थी और 30 सालों के बाद आप लोग मिले हैं और ख़ास मिलने के लिए अगर ऐसे कोई आ जाए तो वो खुशी तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है आजकल के इस ज़माने में जहाँ लोगों को एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है बात करने के लिए भी, तो जाकर मिलना ये तो बहुत बड़ी बात है। दत्तात्रेय अड़त कहते हैं कि शिर्डी के पास वो गए थे किसी गांव में और वहाँ जिनके खेत में वो गए थे तो पानी की कमी बहुत थी तो बहुत समस्या हो रही थी वहाँ पे उन्हें, और पानी की कमी को दूर कैसे किया जाए इस बात पर बहुत सोच विचार किया, कुछ तरकीब ढूंढ निकाली और बोर ले लिया। और फिर दोबारा जब वो गए थे तब वो सारे लोग खुश थे कि उनकी पानी की समस्या मिट गई और आप दत्तात्रेय जी आप कारण बने उनकी खुशी का, बहुत यादगार बात है ये। अकोला से विजेंद्र घाटोल कहते हैं कि उनके छोटे भाई ने उन्हें 2-व्हीलर गिफ्ट दिया। छोटे भाई ने गिफ्ट दिया बड़े भाई को, अच्छा, और मेरी खुशी दुगनी हो गई। ओहो यस, विजेंद्र घाटोल जी जब छोटा भाई बड़े भैया को कुछ अगर गिफ्ट दे दे और वो भी ऐसा वाला गिफ्ट, तो ये तो बिल्कुल ही यकीनन बड़ी खुशी की बात है, बड़ी यादगार चीज़ बन जाती है, फिर वो स्पेशल बन जाती है ना वो चीज़ जो भी दी हो। छोटे जब बड़ों को कुछ गिफ्ट देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो जाती है वो बात।

सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम 7:51 का समय है और इजाजत लेने का समय बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो आपके कारण किसी की जिंदगी में अगर खुशी आई और किसी के कारण आपकी जिंदगी में खुशी आई है तो वो पल कौन सा, वो खुशी कौन सी, वो बात कौन सी, इस बात के बड़े ही अच्छे अच्छे जवाब मिले हैं। और अभी जो फिरोज सिकंदरिया कहते हैं, अरे ये तो बड़ी ही ज्यादा मीठी से भी मीठी कहूँ मैं, ऐसी बात है। ये सीज़न जो चल रहा है आम का सीज़न है और इसलिए ये सीज़न ख़ास हो जाता है, आम बना देते हैं इस सीज़न को बहुत ज़्यादा ख़ास। तो फिरोज़ जी कहते हैं कि उनके किसी दोस्त ने उनको 2 डज़न आम भेज दिए। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैं ना आम किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन किसी के घर पे है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। लेकिन आम ऐसी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा, एक तो साल में एक बार आता है आम, हर साल आता है, लेकिन फिर भी पूरा एक साल इंतजार करना पड़ता है। और कौन किसी को 2 डज़न आम दे देता है गिफ्ट। फिरोजी आप बहुत ज्यादा लकी हो, तो इनको तो खुशी मिलनी ही थी, वो उन्हें मिल गई है। बहुत बहुत ज्यादा मीठी याद है इस साल की आपके लिए, है ना। और इसके बाद ये जो मैसेज हमें आया आरती जी का, वो कहती है कि इनकी मम्मी जो है वो उनके घर का जब झाड़ू पुराना हो जाता है तो वो किसी झाड़ के नीचे जाकर रख देती है, क्योंकि वो पंछियों के काम आता है। पंछी आते हैं और सारे तिनके निकाल कर ले जाते हैं और तुरंत वो झाड़ू बिल्कुल साफ हो जाता है, एक भी तिनका नहीं रहता है। उनको अपना घोंसला बनाने के लिए वो चीज़ काम आती है, और ये सोचकर इनकी मम्मी को बड़ी खुशी होती है। क्या बात है, क्या बात है। इतने प्यारे प्यारे जवाब आए हैं ना आप लोगों के। तो ऐसे एक्चुअली ना आज जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। ये मेरे सामने वाली घड़ी जो है वो मुझे घड़ी घड़ी इशारा कर रही है कि बस अब इजाज़त लेनी है, तो मुझे इजाज़त लेनी है। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे रॉक विद जॉक, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अगले हफ्ते। सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। शुभांगी चाहेगी बस यहीं पर इजाज़त।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की

जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा

0: की गई और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1,00,000 से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने

0: के सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2-3
1: ब्रांचेस ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024

0: 2025 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और

पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम चल रहा है रंगी महफिल। मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम ट्रेनपो पर। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में।

एक ऐसी शख्सियत जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम उनकी लिखी नज़में, गज़लें, अल्फाज हमेशा हमारे बीच रहेंगे। उनके लिखे हुए कुछ अल्फाज थे जो बेहद खूबसूरत भी हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी की हकीकत भी। वो लिखते हैं कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। पत्थर पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मूंग हूं, उसने कभी छूकर नहीं देखा।

शहर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो? मोहसिन नकवी साहब की कुछ लाइनें हैं। कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो? इतने खाइफ क्यों रहते हो? हराहट से डर जाते हो? तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे आखिर क्या लिखते हो? काश कोई हमसे भी पूछे, रात गए तक आखिर क्यों जगते हो? कुछ ऐसी ही अल्फाजों के साथ, या फिर कहिए कि कुछ मिलते जुलते जज्बात, रुदाली फिल्म की ये जो लता मंगेशकर की आवाज़ में है लाइनें, बेहद खूबसूरत हैं। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष कि किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विदेश विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कल मेक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज को विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और मेक्सिको के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 11 बजे शुरू हुआ। 3 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही

0: नमस्कार, सभी की जिंदगी इसी तरह से बढ़िया चले, अच्छी चले और पॉजिटिव नोट के साथ चले, जैसा कि इस गाने में भी आपने सुना कि किसी न किसी तरह की सकारात्मकताएं, पॉजिटिविटीज हम अपनी जिंदगी में तलाश रहे हैं। कहीं मिलती है तो एक अच्छी खासी कीमत के साथ, लेकिन बताऊं उस कीमत से भी बेहतर है कि आप अपना एक संयमित भाव रखें, अपने मनोभाव बड़े बैलेंस रखें, संतुलित रखें, पेशेंस को कभी ना जाने दें अपने हाथ से, और उसके बाद जो भी आपको नाप तोल करने के लिए मिलता है, कोई भी किस्सा, घटना, कुछ भी जो जीवन में अगले पल होने वाला है, उसको बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ जो आपको फैसले लेने होंगे ना, चाहे आपकी पेशेवर जीवन की बात हो यहाँ पर या आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हो, कहीं ना कहीं हमें रहना बिल्कुल सार्थक पड़ता है। हमें बिल्कुल सकारात्मक और पॉजिटिव नोट के साथ आगे चलना है। हमें बड़ा धीरे धीरे सही कदम रखने हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो कोई दुर्घटना हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े, इससे बेहतर है कि हर कदम फूंक फूंक कर रखें और जिंदगी को बड़ी खुशहाली के साथ, बड़े संयम के साथ, बड़े धीरज के साथ जीने की कोशिश करें। देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको कैसे मिलते चले जाएंगे। सदमा फिल्म का एक गाना था सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ में, और यहीं से आगाज़ किया हमने उस प्रोग्राम का जिसे आप और हम कहते हैं जीरो आवर शो, क्योंकि रात्रि के 12:12 हुए हैं, अगला दिन शुरू हो चुका है और अगले दिन का ये शो होता है सबसे पहला शो, कहाँ, आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके अलावा आप हमें ढूंढ सकते हैं, हमें तलाश सकते हैं और हमारे हर शो का और इस शो का आनंद ले सकते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। देश और दुनिया से जुड़ने के लिए, देश और दुनिया के और करीब रहने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसी ऐप से आप दुनिया में कहीं भी हों आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। फिलहाल मैं हूं रजत, जीरो और शो लेके आज का, और इस प्रोग्राम को भली भांति हमने शुरू कर दिया, एक खूबसूरत आगाज़ देने की कोशिश किया, अब इसे एक अच्छे खासे अंजाम तक एक बढ़िया रफ्तार के साथ चलायमान रखने की कोशिश करते हुए आपको रहना हमारे साथ। और अगर आप सुन रहे हैं रेडियो सेट तो ऑन कर लीजिए, ट्यून कर लीजिए, आ जाइए हमारे साथ। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो 9868107070 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इससे आप हमें छू सकते हैं, हमें महसूस कर सकते हैं और हम भी आपको महसूस कर सकते हैं, आपकी भावनाएं जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारे दोस्तों की मोहब्बत ने आज कौन से परवान चढ़े, कितनी और ऊंची होती गई आपकी और हमारे ताल्लुकातों की ये फहरिस्त। ये हमें देखने टटोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं, आपके मैसेजेस, आपकी शिद्दत, आपका प्रेम हमें सब कुछ समझा देता है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जीरो और शो में, मेरे यानी रजत के साथ, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ।

0: नहीं सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ के लिए
3: तो पार्टी शुरू हुई है
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती
6: आज की रात मजा
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
4: म्यूजिक मस्ती
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ माँ का खास है
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती
9: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि वे तेलंगाना अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के सूरत में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सूरत में बरदौली कस्बे के पास महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बसों की टक्कर के कारण हुआ। इस दुर्घटना में 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में हुए सड़क हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 181 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाले इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 90 का दशक बड़ा रूमानी भरा, बहुत ही खूबसूरत, एक अलग किस्म की शिद्दत लिए, यौवन लिए हमने देखा है। फिल्मों की अगर बात करें, और यही बात अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी पर भी लागू करें, मैं तो उस वक्त देखिए कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, साउथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ा हूँ, और बहुत याद आते हैं वो दिन। लेकिन उन्हें याद दिलाने का एक कारण और होता है, क्योंकि उन दिनों का जो फिल्म म्यूज़िक था ना, वो अपने आप में एक लैंडमार्क था, एक अचीवमेंट था अपने आप में। 90 का दशक बड़ा सुनहरा माना जाता है, अब क्योंकि सुहानी रात शुरू हो चुका है, 1:13 है। इस घंटे में हम बात ही 90 के दशक की करते हैं ज़्यादातर, तो वो स्कूल कॉलेज के दिन, उसके बाद हिंदी फिल्मों का ऐसा दौर जिसे एक अलग ही दर्जा मिला हुआ है पुराने 50, 60, 70, 80 वाले दशक के अलावा। वो तो एक सुनहरा दौर है ही, लेकिन 90 का एक अलग दर्जा है, इसके एक अलग बात है, क्योंकि हमने सब अपनी युवावस्था हम सब ने वहाँ देखी है, ज़्यादातर लोगों ने, मेरे जैसे बहुत होंगे जो हमारे लिसनर्स होंगे, और काफ़ी लोग हैं, हमारे एक श्रोता मित्र हैं राजकुमार साहब, वो तो उन दिनों, आज कल वो तिरुचिरापल्ली में हैं अपने गृहनगर में, लेकिन उस वक्त वो दिल्ली में ही होते थे। कई बार उन्होंने अपने कॉलेज से जुड़े हुए, एफएम रेनबो से जुड़े हुए अपने तजुर्बे हमारे साथ साझा किए हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कॉलेज के दौरान खूब बढ़िया फिल्में आती थी, उस ज़माने की म्यूज़िकल हिट फिल्में आती थी, तो वो हमारी कॉलेज लाइफ और एफएम के दिन और उन गानों के दिन सब आपस में मिक्सचर हो जाता था, मिश्रित हो जाते थे, और इनका जो सम्मेलन था वो आज भी याद किया जाता है हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए। हम कंपेयर करने लगते हैं उन दिनों के साथ, आज के म्यूज़िक को उन दिनों के म्यूज़िक के साथ, तो फिर हम यही पाते हैं कि हमारा दौर कहीं ज़्यादा बेहतर था, और उसी दौर को याद करते हुए, उसी दौर को एक ट्रिब्यूट करते हुए, हमारा ये जो शो है ना सुहानी रात, ये आपके लिए कुछ ऐसे ही नगमे आपको पेश नज़र करता है जिन्हें सुनकर आप आंखें नम भी कर लेते होंगे और यादों में कहीं खो जाते होंगे। तो चलते हैं उस कारवां पर, चलते हैं उस खूबसूरत सफ़र पर जिसे हम कह रहे हैं सुहानी रात, और सुहानी रात के इस सुहाने सफ़र में मैं हूं आपका दोस्त रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं, आप कहीं भी हों, दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम। और अभी की बात करें तो सुहानी रात, आप सभी का स्वागत मेरे यानी रजत के साथ।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 से 5 तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित

0: द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियाज काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हरा कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें इंडोनेशिया के अल्बी फरहान ने सीधे गेमों में 21-19, 21-16 से हराया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रॉयलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए और प्रोग्राम में जुड़े थे हमारे साथ पिछले शोज़ में भी, और अभी भी मैसेजेस आने आप लोगों के शुरू हो चुके हैं। समय हुआ है 2:13, लगभग 1/4 सफ़र जो हम तय कर चुके हैं इस रात का सुबह तक पहुंचने के लिए वो पूरा हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सफ़र बाकी है। बहुत से गाने, बहुत सी फरमाइशें, बहुत से दिलों के अरमान अभी इस दस्तरखान पर आने बाकी हैं जिनका हम नाम रखते हैं अलग अलग शोज़ में। फ़िलहाल इस शो का अगर हम जिक्र करें तो इसका नाम है भुलाए ना बने। ऐसे गीत जो इतिहास बन चुके हैं लेकिन इतिहास में दर्ज भी हो चुके हैं, अपना एक ख़ास मकाम बना चुके हैं, अपनी जगह बना चुके हैं आपके जहन में भी, हमारे जहन में और दिल में भी। और यही वो सफ़र होते हैं एक्चुअली जहां आपका और हमारा स्वाद मिलता है और हम एक साथ लय में लय मिलाकर चलते हैं, कदम ताल मिलाकर चलते हैं। और इन रात के शोज़ का जो तासुरात है वो दिन में भी देखने को मिलता है जब हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ बेतरतीब जुड़ते हैं। आप सभी का स्वागत इस शो में भी और हमारे तमाम शोज़ में भी जो आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं, साथ ही साथ आप जुड़ते हैं हमारे साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। मैं बता दूं इसराइल से धर्मेंद्र भाई जुड़े थे, एक और हमारे श्रोता जुड़े थे, एक गीत की फरमाइश की थी उन्होंने जो एक्चुअली 1983 में आई फिल्म से था, तो अभी हम उस फरमाइश पर नहीं गए हैं और कोशिश करेंगे इस फरमाइश को आज सुबह से पहले हम उन तक पहुंचा दें। वादा भी हमने उनसे किया है। एक राजकुमार साहब का मैंने जिक्र किया था, वो तो लगभग हर शो में जुड़ते हैं। उन्होंने बताया था कि उनके भाई हैं, उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, कुछ परेशानियां हो गई हैं। तो राजकुमार भाई, हमारी तहे दिल दुआएं हैं आपके साथ, आपके भाई साहब के साथ और पूरे परिवार के साथ भी, कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर करें और ओवरकम करें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आपके साथ बैठकर हमारे शोज़ उन्हें किसी भी वक्त सुन सकते हैं। आप ये शो तो यहीं इसी दौरान आप सुन सकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे तो आप ज़रूर सुनवाइएगा हमारा शो उन्हें, उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर सुनेंगे। इसके अलावा अफशा खानम जी का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे गीत हैं रजत जी और हमारे शोज़ में अक्सर जुड़ती हैं ये आवाज़ें, जुड़ते हैं इनके मैसेजेस जिनके मैंने नाम लिए, और यही प्यार, यही स्नेह, यही मोहब्बत आपका जुड़ता रहे हमारे साथ, मिलता रहे हमें बेतहाशा और स्वागत हम करते रहें और करते रहेंगे। आप जुड़े हैं फिलहाल कार्यक्रम भुलाए ना बने से मेरे यानी रजत।

0: के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सभी का तहे दिल स्वागत एक बार फिर से।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2017

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में से पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई

शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई के संरक्षित क्षेत्रों के अतिक्रमण मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कई दशकों से जारी है और लगातार बढ़ता गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 15 दिन बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम, पूंजी कोष और अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता में से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए थे जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 3:09 और कुछ सेकंड्स और वक्त है उस प्रोग्राम का जिसे हम कहते हैं मिडनाइट मेलोडीज, मध्य रात्रि में सुने जाने वाले, मध्यम मध्यम तो नहीं कहूँगा, ऑर्केस्ट्रा के साथ होंगे लेकिन खूबसूरत गाने होंगे। इस गाने को जो भी आपने सुना मैंने प्यार किया फिल्म से, इससे आपको आने वाले इस कार्यक्रम के मुस्तकबिल की थोड़ी सी बानगी मिल गई होगी, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की खूबसूरती हम नज़ाकत के साथ, शफाक के साथ आपके लिए लेकर आए हैं और पिरो कर आए हैं। वो सुंदर सुंदर गीत जिनमें 80 भी है, 90 भी है, कुछ 2000 के आसपास के गाने भी होंगे, कुछ मौका लगा तो उससे भी पहले का, लेकिन आपके इस एक घंटे को हम बहुत ही मदमस्त बना देने वाले हैं, ये वादा मैं ज़रूर करूँगा आपसे। और उम्मीद करूँगा कि आप इस शो के ज़रिए हमें याद रखें, आकाशवाणी रेनबो को याद रखें और इस ख़ास घंटे को याद रखें जिसके भी 50 मिनट अभी जाने बाकी हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरू ही हुआ है। 3:10 और फिर से कुछ सेकंड्स अब की बता देता हूँ कि अब हो रहे हैं 3:10 और 40 सेकंड, और ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम चल रहे हैं प्रोग्राम की तरफ वापस जहाँ से हम आए थे। और आपको जो वादा किया मैंने अभी अभी इस पूरे घंटे में आपको सुनवाऊंगा वो गीत कि आप अगर नहीं सोए हैं तो सो भी नहीं पाएंगे, आपको जागने का पूरा लुत्फ उठाने का पूरा पूरा मौका देंगे इस पूरे घंटे में। मैं हूँ रजत, प्रोग्राम है मिडनाइट मेलोडीज, मेरे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, 102.6 पर, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि फिर गाड़ी छूट जाएगी। खैर हम गाड़ी नहीं छूटने देंगे, आपको पूरा वक्त देंगे और आप सुनते हैं और सुनते रहिए, जुड़िए अगर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो, वरना गानों का लुत्फ उठाइए मेरे यानी रजत के साथ मिडनाइट मेलोडीज में।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए उपक्रम, पूंजी कोष

और अंबेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायक कहानियां हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रॉड्रिक्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेलसी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं के नाम रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल हमारी बात कह दी इस खूबसूरत गाने ने जिसे रफ़ी साहब ने गाया था। फिल्म हंसते ज़ख्म से ये पहला गीत हमने चुना आज अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम का नाम है सारे गामा। एक खूबसूरत और एक अजीम शुरुआत के बाद अब कदम रुकेंगे नहीं, और क्योंकि जैसे जैसे कदम चलते जाएंगे वैसे वैसे हम पहुँचते जाएंगे कैलेंडर में कुछ घंटे पहले दाखिल हुए इस दिन के सूरज के आगोश में आने में। तो दिनचर्या इससे पहले कि शुरू हो क्यों ना खूबसूरत गानों का, खूबसूरत संदेशों का आनंद लिया जाए। प्रोग्राम सारे गामा में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, इस वक्त आपका हमसफर रजत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए इस खूबसूरत बेला में जहां घड़ी ने बजा दी है सुबह के 4:15 और बड़ी तेज़ी से सुइयां अब आगे बढ़ रही हैं और बस सूर्य देवता के निकलने का इंतज़ार भरी है। लेकिन तब तक हम भी गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और उसके बाद तरोताजगी के साथ अगले दिन की तरफ बढ़ेंगे, दिन का शुभारंभ करेंगे, दिन का स्वागत करेंगे। इसी वादे के साथ सारे गामा प्रस्तुत है आप सभी के लिए, पेश नजर हैं खूबसूरत गाने जो खास तौर से लाया हूं मैं आप सभी के लिए।

0: ¡Cuál si teri boli!
1: ¡Ay, ay!
0: ¡Tiri, tiri, chinazar, me he jadu!
1: ¡Are, besure gane, kyo suna rahi ho mujhe!
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
1: अच्छा दादा।
0: हाँ तो बच्चों,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

0: एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा,
1: हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं।
0: उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,
1: हुजूर

0: se teri boli
1: aye haye
0: teri teri chhi nazar mein hai jadoo.
1: Are besure gaane kyon suna rahi ho mujhe?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी.